0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइली वजीर खजाना बेजलील स्मोत्रिच ने कहा है कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में नाबलूस के जनूब में वाक़ एली बस्ती में 763 नए गैर कानूनी आबादकार यूनिट्स बनाने का इरादा रखता है। इस इकदाम से आने वाले सालों में इस बस्ती का हजम 3 गुना बढ़ने की तवक्को है। इसराइल का चैनल 14 के मुताबिक स्मोत्रिच ने कहा कि इसराइल गैर कानूनी आबादकार फार्म्स और कम्यूनिटीज़ की तामीर जारी रखने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि ये रिहायशी यूनिट्स मकबूजा मगरबी किनारे में बेंजामिन रीजनल काउंसिल के मातहत आने वाली गैर कानूनी अली बस्ती में तामीर और तैयार किए जाएंगे। चैनल 14 ने बताया कि इन मंसूबों पर अमल दरामद से आने वाले बरसों में इस गैर कानूनी बस्ती का हजम 3 गुना बढ़ने की तवक्को है, जिससे वहाँ हज़ारों मजीद गैर कानूनी आबादकारों की रिहाइश मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने बारहा ख़ुद को इसराइल की तारीख में आबादकारी की सबसे ज़्यादा हामी हुकूमतों में से एक करार दिया है। इस माह के अवाल में स्मोत्रिच ने कहा था कि हुकूमत ने 2022 के आखिर में इक़्तदार संभालने के बाद अब तक मकबूजा मगरबी किनारे में 104 नई गैर कानूनी बस्तियों और 160 ज़रई आबादकार चौकियों के क़याम की मंजूरी दी है। फ़लस्तीनी आदाद व शुमार के मुताबिक मकबूजा मशरक़ी अलकुद समेत पूरे मकबूजा मगरबी किनारे में कायम 141 गैर कानूनी बस्तियों और 224 चौकियों में तकरीबन 7.5 लाख गैर कानूनी इसराइली आबादकार रिहाइश पजीर हैं। जर्मन मीडिया ने पुलिस का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि बर्लिन के डाउनटाउन में एक परेड के दौरान एक गाड़ी हुजूम में घुसने से एक शख्स हलाक और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। यह वाकया हफ्ते के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक रात के तकरीबन 10 बजे टियरगार्टन ज़िला में एक परेड के दौरान पेश आया। पुलिस और हंगामी खिदमात के अमले ने जाए वकूअ पर भी जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की, ताहम उनकी हालत के बारे में फौरी तौर पर मज़ीद कोई मालूमात दस्तियाब नहीं हो सकी। पुलिस और हंगामी खिदमात की कार्रवाई के दौरान मुंतजमीन ने मुतासरा इलाके में परेड को ख़त्म कर दिया। बिल्ड अखबार ने आनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि एक सफ़ेद रंग की वैन तेज़ रफ्तारी से हुजूम में घुस गई। इस वाक़े के बाद एमरजेंसी डिस्पैच सेंटर में बड़े पैमाने पर हलाकतों या जख्मियों का अलर्ट जारी कर दिया गया। फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बताया कि 44 हंगामी इमदादी अहलकारों को जाए वकूअ पर तैनात किया गया था। ब्राज़ील के सेनेटर फ्लावियो बोलसोनारो ने अक्टूबर के इंतखाबात में सदर लुइस अनासियो लूला दी सिल्वा का मुकाबला करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें अर्जेंटाइन के सदर हावियर माइली की हिमायत, उनके क़ैद वालिद का मस्नूई ज़हानत से तैयार करदा पैगाम और इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का वीडियो खिताब पेश किया गया। बोलसोनारो ने टैक्सों में कटौती और जरायम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का अहद किया, जबकि अपने वालिद यायर बोलसोनारो की सियासी मीरास को आगे बढ़ाने के अज़म पर भी जोर दिया है। उन्होंने साओ पोलो में इंतखाबी मुहिम के आगाज़ की तकरीब में सब्ज और पीले रंग के झंडे लहराने वाले हामियों से कहा कि यहाँ बोलसोनारो का खून है। साबिक सदर यायर बोलसोनारो वलुवा की जीत वाले इंतखाबात को उलटने की कोशिश में अपने किरदार की वजह से नज़रबंद हैं। साबिक खातून एवल मिशेल बोलसोनारो भी फ्लावियो बोलसोनारो की नामजदगी की तौसीक करते हुए एक वीडियो पैगाम में नजर आईं। उन्होंने कहा कि फ्लावियो, खुदा आपकी नामजदगी को बाबरकत बनाए और आपकी हिफाजत करें। सेनेटर ने दिसंबर में अपने वालिद की तायद हासिल कर ली थी, लेकिन मई में लीक होने वाले पैगाम के बाद उनकी मुहिम की रफ्तार सुस्त पड़ गई, जिनमें उनका ताल्लुक कैद बैंकर डैनियल वोरकारो से जोड़ा गया था। बाद में सेनेटर ने तस्लीम किया था कि वोरकारो ने यायर बोलसोनारो के सियासी कैरियर पर बनने वाली एक फिल्म की माली मुआविनत भी की थी। बोलसोनारो सियासी इत्तेहाद कायम करने के लिए भी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि वस्ती दाएं बाजू की जमातों ने अब तक उनकी नामजदगी की तौसीक करने के बजाय गैर जानबदार रहने को तरजीह की है। वाज़ेह रहे कि एक सर्वे के मुताबिक दूसरे मरहले के मुमकिन मुकाबले में लूला को बोलसोनारो पर 43% के मुकाबले में 48% की बरतरी हासिल है, जबकि जून में ये शरह 43% के मुकाबले में 47% थी। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

कि कोई पहाड़ कहाँ से शुरू होता है, एक तिजारती काफ़िले का रास्ता किस वादी से गुजरता है, या कोई शहर किस दरिया के किनारे आबाद है। ये सिर्फ रास्ता तलाश करने के लिए नहीं, बल्कि बका के लिए भी एक चाबी थी। यही वजह है कि नक्शे सिर्फ जुग्राफिया ही नहीं बताते थे, बल्कि ये भी जाहिर करते थे कि कोई तहजीब दुनिया को किस तरह देखती थी और ख़ुद को उस दुनिया में कहाँ खड़ा पाती थी। फिलिस्तीन पूरी तारीख में एक ऐसी गुजरगाह रहा है जहां तीन बर्रआज़म एक दूसरे को छूते हैं। एशिया से आने वाले काफ़िले, अफ्रीका से उठने वाले तिजारती रास्ते और बहिरे रूम को अबूर करने वाले जहाज़, सब इसी सरजमीन से गुजरे। इतने अहम चौराहे का नक्शों के मरकज में होना फितरी बात थी। कदीम मिस्री कुतबों से लेकर रोमी नक्शों तक और बाज़ेंटीनी रिकॉर्ड से लेकर उस्मानी अटलसों तक फ़लस्तीन को महज एक ख़त्ते के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे आलमी मरकज़ के तौर पर पेश किया गया जहां से सिमतों का तायुन होता था और रास्ते आपस में मिलते थे। लेकिन वो नक्शा जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं, ना तो चमड़े पर बनाया गया था और ना ही किसी पुराने कागज़ पर उतारा गया था। यह नक्शा पत्थरों से बनाया गया था और वो भी हजारों लाखों छोटे पत्थर के टुकड़ों से। तसव्वुर कीजिए, 6वीं सदी ईस्वी में आप मदबा के एक छोटे से चर्च के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। आप अपना सर ऊपर उठाने के बजाय अपनी नज़रें ज़मीन पर अपने कदमों के नीचे टिका देते हैं। आपके पैरों के नीचे पत्थर पत्थर जोड़कर बनाई गई एक पूरी दुनिया फैली हुई है। दरिया नीले पत्थरों से बह रहे हैं, शहरों को सुर्ख और स्याह लकीरों से शक्ल दी गई है। ऐसा लगता है जैसे उस दौर के लोग ज़मीन के नीचे से आपसे कह रहे हों, ये है हमारी दुनिया, ये है वो ज़मीन जिसे हम देखते हैं और मुकद्दस मानते हैं। आज मदबा मोज़ाइक मैप के नाम से जाना जाने वाला बाज़ेंटीनी दौर का ये शाहकार महज आर्ट का एक नमूना नहीं है, बल्कि ये आज के दौर तक पहुंचने वाली कदीम तरीन, मुफस्सल तरीन और असल जुग्राफियाई दस्तावेज़ है। लाखों छोटे रंगीन पत्थर के टुकड़ों को यकजा करके बनाई गई ये पिचकारी यानी मोज़ाइक सिर्फ जमालियाती महारत का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद साइंसी और टिपोग्राफिकल दुरुस्तगी आज भी मुअर्रिखीन को हैरत में डाल देती है। इस नक्शे को बनाने वाले कारीगर ने यरूशलम यानी अलकुद्स को बिल्कुल मरकज़ में रखा था और शहर को परिंदे की आंख के जाविये से नक्श किया था, इस हद तक कि आप नक्शे पर यरूशलम का मशहूर दमिश्क गेट, सुतूनों वाली मरकजी सड़क कार्दो और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर यानी कनाइसुल क़ियामा को वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि नक्शे में साइंसी तफसीलात इतनी मजबूत हैं कि दरिया उर्दुन में तैरने वाली मछलियों को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिंत में तैरते हुए दिखाया गया है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक दरिया उर्दुन में मछलियों के रुख की यह तस्वीर बहिरा मुर्दार की शदीद नमकीनी की तरफ एक अलामती इशारा है। इसीलिए माहिरीन आसार कदीमा के लिए मदबा का ये मोज़ाइक महज माजी को दिखाने वाली एक तस्वीर नहीं है। ये पत्थरों पर लिखी हुई एक साइंसी दस्तावेज़, एक खामोश गवाह और वक्त के सफ़र से हम तक पहुंचने वाला एक कुतुबनुमा है। जदीद खुदाइयों के दौरान मिलने वाले बहुत से आसार का मकाम इस नक्शे से मवाजना करके दोबारा दरियाफ्त किया गया। सदियों से भूली बिसरी कदीम सड़कों की सिमतें, गिरजाघरों के मकामात और यहाँ तक के बहिरा मुर्दार पर माल बरदार तिजारती जहाज़ों की मौजूदगी भी इन्हीं पत्थरों के दरमियान से दोबारा मंजर आम पर आई। बाज़ औक़ात पिचकारी का एक छोटा सा पत्थर तारीख की दर्जनों किताबों से ज़्यादा वाज़े और हतमी मालूमात फराहम कर देता है। यकीनन फ़लस्तीन के नक्शों की कहानी सिर्फ मदबा तक महदूद नहीं है। रोमन सल्तनत के दौर के मशहूर रोड गाइड जैसे कि प्यूटिंजर मैप में यरूशलम को बहिरा रूम और अंदरूनी इलाकों को आपस में जोड़ने वाली बुनियादी शरियान के तौर पर दिखाया गया था। रूमी सड़कों को दिखाने वाला यह लंबा पार्चमेंट इस सल्तनत के कदीम तरीन नेविगेशन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता था।
قرون وسطیٰ میں زائرین راستہ نہ بھولنے کے لیے ان نقشوں کا سہارا لیتے تھے، جبکہ عثمانی دور میں تیار کردہ تفصیلی نقشوں اور زمین کے ریکارڈز کی بدولت پانی کے راستوں، وقف املاک کی زمینوں اور تجارتی راستوں کو ایک ایک انچ کر کے ریکارڈ پر لایا جاتا تھا۔ ہر نیا نقشہ جغرافیے میں صرف نئے راستے ہی نہیں بلکہ ایک نیا نقطۂ نظر اور فلسفہ بھی شامل کرتا تھا۔ شاید اسی لیے نقشے کبھی بھی مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں رہے۔ کسی شہر کو مرکز بنانا، کسی راستے کو نمایاں کرنا یا کسی جغرافیائی نام کو زندہ رکھنا، یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ لوگ دنیا کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے تھے اور تاریخ کو کیا شکل دینا چاہتے تھے۔ نقشے کبھی سمت دکھاتے تھے تو کبھی معاشروں کی اجتماعی یادداشت کی تعمیر کرتے تھے۔ آج ایک چرچ کے فرش پر موجود وہ پچکاری ہمیں خاموشی سے یہ سرگوشی کرتی ہے، اگر کوئی تہذیب تاریخ کے اسٹیج سے رخصت بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے چھوڑے گئے پتھر بولتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی مزاح کا ایک چھوٹا سا پتھر صدیوں سے بھلائے گئے کسی قدیم شہر کا نام پوری دنیا کو دوبارہ یاد دلا سکتا ہے۔ کیونکہ یادداشت صرف انسانوں کے ذہنوں میں ہی نہیں رہتی، بلکہ یہ کبھی کسی پتھر پر، کسی پرانے راستے کے نشان میں، اور کبھی صدیوں سے قدموں تلے دبی اس پچکاری میں زندہ رہتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم پتھروں سے نکل کر سمندر کی طرف چلیں گے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ہم ایک ایسی قدیم بندرگاہ کی طرف سفر کریں گے جہاں ہزاروں سالوں سے تاجر، ملاح اور قافلے ملا کرتے تھے۔ غزہ وہ قدیم شہر جو صرف آج کے واقعات کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ قدیم دنیا کے اہم ترین اور اسٹریٹجک تجارتی مراکز میں سے ایک کے طور پر تاریخ کا رخ بدلنے والا شہر ہے۔ اگلے پروگرام میں غزہ دنیا کی قدیم ترین بندرگاہوں میں سے ایک کے عنوان کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔